एक अखर दा निखेड़ा करना है। कई गुरसिख इत्थे अपमान पड़ जांदे ने, लेकिन है इत्थे

के पवित्र बाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारे श्लोकों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मैं ता कालू जी राय बुलार दे पटवारी सन। आख्या मेहता जी आप नू राय जी याद करते हैं, उस वन विच बैठे हैं ब्रिक हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन। उन्होंने मेहता जी आए, राय जी ने आउंदे ही पूछया, मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया? मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया, 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया। आख्या मैं तो उस वेले नू कोसदा हां, राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू सराप देंदा।

मैं आवांगा। आ वेखना घर दी की हालत हो गई, मां ने रो रो के अखां गवा दितियां तेरे प्यार। गुरु नानक पातशाह आए, आवाज दिती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया, ता मेरे लाल दी आवाज है, ये ता मेरे नानक दी आवाज है। बज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा। गुरु नानक पातशाह ने अगां होके मां नूं मां दे गल ना लगे। माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलियां तां की वेख्या, चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या, बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੂਕ ਰਿਹਾ। नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठां, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदा है कदे इस पासे मुंह करके बैठा। सोचदा खबरे इत्थों ना आ जाऊं, फिर सोचदा खबरे दूजे पासियों ना आ जाऊं, मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रिया ते पिछों आवाज आई, राय जी असी आ गए। आए गए दी आवाज सुनी, राय ने परत के वेख्या, सामने गुरु नानक खड़ोता ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ

उस पूर्ण जोत करके मल्ली ते गल साडे समझ आ जाएगी। क्योंकि इथों आवाज आउंदी भगत कबीर जी दा एक शब्द जिस अंदर वो ये आवाज दे रहे ने, आओ उस आवाज नूं आपां बुलंद करिए।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी, आपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के, इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी, अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेनू शरीर मिलिया सी, उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिसके वास्ते ये इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओह गलत

दिस इज व्हाट वी हैव डन, ऐसे किया है। स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात कहाट किसी ही पे सगले लर लर मुआ, बात बात विवाद, हरेक दे जीवन च बात विवाद है, हरेक दे जीवन च बात विवाद, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती। बाद साढ़े जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही बात घाट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा घट किसे दे थोड़ा जा वद, सारे केंदे लड़ लड़ के मर रहे हैं। इस चीज च ए रतन जन्म जिहड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते। स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा है, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया, इना चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता। तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ए प्राप्त होया सी, प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। यही तरह एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी, ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है। तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन कि अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है। बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने, ये तेतों हिसाब तेतों ए सवाल ये तेतों लेखा पुछया जाना है। कहंदे हन

जगी और न यहे महात्म में अवतारी उजागिर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथराज में अमृत नाम पियो एह मद ते मत चुके रे मन पेद पेद न जान दियो पर ताचिर दे।

सुन बेद बिरंत विचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट।

पंचायनी आपे होवा आपने आप साजियाने आपे ही समखलोवा आपे पट्टी कलमिया आप लिखन हारा हुआ सब उमर

संतों की तरियोरे आदि पुरख पर तख लिखो अक्षर मत कितुरे प्रगत ज्योत जग मगे तेज पू मंडल छायो पारस परस परस परस गुरु लग विद।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होने तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जब तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नूं गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन

0: जी महाराज, धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है। पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, तलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए? महाराज जी आखते हैं साडे घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है। नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए।
0: नाम त्याना ही पूजा करना है। जो नाम नहीं त्यादा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है। वो पूजा नहीं। पूजा उदो होंगी है जदों किसी का नाम दिल च बस जाए, वो पूजा होंगी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है। कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सो इतना सानू समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम से आइए बिन नावे पूज ना। महाराज जी आप जी का तीर्थां के संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाने दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इस देर सच है। महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो कि बहुत लोग वेद शास्त्र सिमृतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमृतियां आदि पढ़िए। महाराज जी आखते नहीं साडे वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना, नाम जपना ही साडे वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साडे ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां से सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसी गल गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुने, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं वो ये कहते हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गए हो, केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहते साडे घर सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं। नानक के घर केवल नाम, नानक के घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जिना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहते नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस, समा समाप्त है। आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा कि गुरु बाबा जी के घर केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम की छड़ी तो बिना चलण की कोशिश करते हैं वो गिटे गोडे जरूर तड़ाणगे, वह गिरणगे, चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी के नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए, गाइए, फिर कीर्तन का थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों नु जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार नु अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगा नु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करन दी इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजां दा इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है, वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

डाइजेस्ट करनी थोड़ी जी मुश्किल है। बिन नावे सब चोर, बिन नावे की आख्या है, आप आखो बिन नावे सब चोर, सो असि सारे ही चोर हैं। बिन नावे सब चोर, वी मस्ट राइट डाउन दिस समवे। बिन नावे सब चोर, जो नाम नहीं जपते वो भले इंसान नहीं हैं, वो चोर हैं। कोई आखे इंसान के मैं तो कोई चोरी नहीं करता, मैं चोर किमें हो गया, मैं अपना काम धंधा करता हाँ, नौकरी करता हाँ, दसा नहों की किरत करता हाँ, ये मैनू चोर किस तरह कह दिता है? इसका जवाब कोई मंगेगा ही ना, मैं तो चोरी कभी की नहीं, किसी का एक सेंट नहीं चुराया, तो मैं चोर किमें हो गया? महाराज जी कहते हैं बिन नावे सब चोर, बिन नावे सब चोर। हुण किस तरह असी इस चीज का जवाब लभीए कि असी चोर किवें होए? सब चोर एक अद्धा नहीं, सारी दुनिया चोर है। चोर इस तरह है, दातां किसे दियां हन? इह बिना अपनियां लैंदा कि मेरियां हैं।

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोचे, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै।

प्रभु की जरा गल सुना दे संसार के विकारा के बंधना तो जरा बचावे है कोई ऐसा सज्जन मित्र है कोई ऐसो हमरा मीत सकल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो जीत ओदे नाल पक्की सांझ पाना श्लोक वारा ते वधीक पढ़ने आ साहिबा ने कहा जे तू दारू पान ताहू पुछ तड़न कर तैनू जीन भी बड़ी जाच है तू बड़ा दारू है तू बहुत सियाना है बड़ा समझदार होगा फिर भी तू उन्हां नू पुछ लै ताहू खरे सुजान बन्या एनी कपड़ी जेड़े इन्हां पानिया चो लंघे हुए ने किसे नवे पतन ते आ जावे किसे नवे नदी दरिया ते पहुंच जावे उथो लंघन का मसला पैदा हो जावे ना तू भावे किड्डा वड्डा तारू है फिर भी तू उन्हां नू पुछ लै जेड़े इस राह तो लंघे पता नहीं किथे भंवर होवे किथे पानी की दशा होवे इस राह विचों लंघन वास्ते चंगा रवे जे तू किसे दारू नू जिहड़ा इथों लंघिया होवे उन्हूं पुछ लवे इथों तू किवें लंघिया सी की हालत है इसे तरह धर्म के मार्ग से बंदा किन्ना होशियार ते चलाक धर्म के मार्ग से उन्हां लोकां दे नाल इह गल कर लैणी लालन रावया कवन गति री तू किस तरह पति नाल प्यार कीता है तू प्रभु नाल किस तरह प्यार पाया प्रभु नाल तेरी सांझ किवें पक्की होई है तू प्रभु नूं किवें पाया सखी बतावो मुझे मतीरी मैनू भी तू मत दे चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी जिन्हां सुहागणा ने घर स्वर्ग बना रखे ने जिन्हां दे घर दे विचों खुशियां ते खेड़िया की खुशबू उठती है उन्हां नू पुछ लैणा चाहीदा है यह खुशबू तुहानू किवें प्राप्त होई इस घर नू स्वर्ग तुसां किवें बनाया चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी जिन्हां घरां चो कलेश उठदा होवे जिथे प्यार की कोई सांझ ना होवे उन्हां नाल गल करन दी भी की लोड़ है मत उहदा नू कोई मत ऐसी मन च आ जावे उन्हां दे कोलों कोई ऐसा रंग चढ़ जावे कि अपना भी जीवन खराब कर पईए उन्हां दे नेड़े होईए जिन्हां दे जीवन च सुख नजर आउंदा है जिन्हां दे जीवन च आनंद नजर आउंदा है चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी वो जेड़े संत भगत परवान जो प्रभु पाया सही विचखण जंत जिनी हर ध्याया जिन्हां दे बारे सुखमणी साहिब पढ़ने जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभु सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जो आप चल सकदा धर्म दे मार्ग ते किसे होर नूं तोरन दी समर्था रखदा है इहो जिहे बंदे नूं लभ के उहदे नाल मित्रता पाई सोभा लाहेवंदी रहिंदी ते जिस दिन कोई मिल पैंदा है धन गुरु नानक दा सवारिया है भाई मन सुख जिस दिन महाराज शिवनाभ नूं मिले ओ वर्तां पूजा कर्मां बेहत तरह दीआं रस्मां च फसिया है बंदा जिस वेले भाई मन सुख दे दर्शन कीते हैरान हो गया ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਮਸਤੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਉਹ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਚਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਗਲਾ ਦੀਪ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ

अग्नि दा दृष्टांत दिता। आखिया अग्नि साडे किडे कारज सवारदी है, 36 प्रकार दे भोजन अग्नि दी सहायता नाल तैयार होंदे हैं, अनेकां काम सवारदी है। ते है ओ भी अग्नि जो करोड़ां दी जायदाद नूं जला के राख कर दिंदी। इसे तरह तेरा जीवन है, जे कुसंगत मिल जावे तां बर्बाद, ते जे सतसंगत मिल जावे तां आउणा सफल हो जांदा। भाई साहब अग्नि का दृष्ट

तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम, मालक दा दर सोना है। एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है। सो दर केहा, सो कर केहा, जित दर वसे कवन दर कही है। दरा भीतर दर कवन लहे, वो केड़ा दर है।

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री वाहे।

0: सकूं जो तेरे रंग रासे स्वामी दिल का जन्म मर दुख नासा तेरी बख्श ना मिटे कोई
1: सतगुरु का दिलासा जिस